0: बोलो कुछ तो बोलो बोलो बोलो बोलो
1: इन सिनेमा वे देवंत चरित ओब वडा आदरय करन चरित एक हिंदी चित्रपट गीत वल रूप रामु तवमत ओबे मतके इतिरि वेला एति तवमत ओबे मतकेट नगेनव एति इतिन हिंदी चित्रपटयक अपूरु गीतयक रस विंदिन्नट होंदम वेलाव मेक कियला मट हितुना इतिन ओबे मतकयन एक तनि वेन्नट आराधना करनवा।

0: तुम्हारा जो भी काम हो मुझसे कहा करो, मैं कर लूंगा।
1: अच्छा बेटे, अब तो जाके सो जा।
0: आज मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं तुम्हारे पास सो जाऊं।
1: आओ आओ बेटे, मैं तुम्हें सुना दूं।